0: बस एक औरत है इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगदा है ए जंग करना जान दी है, पर मैनू नहीं हरा सकदी।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते पारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि उह कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान धार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस यह कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वो मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहलां तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निग्गी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया तां तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो सिखी विच रह के।
4: उदों जिंद कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रां नू अपने सामने प्रगट होंदे देखदी है। उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां ते तुहाडे लोड़ दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुकियो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौण हो।
3: मैनू नहीं लगदा कि मैं दोबारा करजी दरांगी।
5: शाबाश, पर जे तुहानू कदे डर लगे भी उदो समां है योधियां दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओह कीहड़ी वार है?
5: साडे कोल बहुत सारियां वारां ने।
1: मैनू लगदा है इस समें ए वार साडे गाउण दे लई बिलकुल ठीक है।

0: You are listening to SeekNet Radio. Right now, we need your help to continue to provide this service to thousands of people all around the world, every single day. If you enjoy this free service, please take a moment right now and go to www.seeknet.com/donation and show your support. Thank you.
1: ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਆ।
2: ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
3: ਵਾਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਏ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
3: ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
4: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ।
1: ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ।
5: ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ।
1: ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ।
6: ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ? ਕੀ ਇਹੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਰਾਨੇ?
7: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
1: ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਚਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ।
7: ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਹੋ।
6: ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
8: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਾਹੌਰ ਗਏ।
1: ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
8: ਭਾਈ ਜੇਠਾ
1: ਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
6: जहांगीर सम्राट ने यह सोच भी किवें लिया कि वह गुरु जी नूं बंदी बना लवेगा।
9: असी यह गुरु दा अपमान बिल्कुल नहीं होन दे सकते, हुण बहुत हो गया।
6: साडे कोल इन्नी शक्ति है कि असी इस सम्राट नूं आप ही सजा दे सकते हाँ।
7: पर असी जानते हाँ कि गुरु साहिब साडी शक्ति नूं इस्तेमाल करन दी मनाही ही करनगे।
1: उस समय अमृतसर तो बाबा बुड्ढा जी गुरु जी दे माता जी पासो एक फरमान लेके आए।
10: अपनी शक्ति दे अधीन तुसीं जो भी कर सकते हो करो, अते मेरे पुत्तर नूं जल्दी तो जल्दी वापस अमृतसर पहुंचा दिओ।
7: जे माता जी कहंदे हन कि असीं अपनी शक्ति नाल कुछ भी कर सकते हां, ते
6: तां चलो असीं भी फिर शेर बन के दिखाउंदे हां। चलो मेरे नाल।
7: जे तुहानू यह ठीक लगता है ते मैं तैयार हां।
6: असीं उसका खात्मा कर देंगे। गुरु जी जल्द तो जल्द कैद विचों छुटने चाहिए हन।
1: भाई जेठे ने अपने नाल पिराने नूं ले लिया। दोनों ने भयानक शेर का रूप धारण कर लिया। अगे बादशाह दिल्ली विच एक विशाल किले विच रह रहा सी। सो उस रात वो शेर दे रूप विच तब्दील हो गए। वो दो भयानक शेर शाही सोन वाले कमरे विच दाखिल हो गए।
11: नहीं, मेरा अंत आ गया है।
1: बादशाह मदद लेकर कुरलाया, अते गुरु जी ने उसनु शेरा तो बचा लिया। अगले दिन उन्होंने फिर शेर का रूप धारण कर लिया अते बादशाह नु डराया।
11: ए शेर असली हन, पर मेरे पलंग दे हेठा किवें आ जांदे हन, अते फिर इकदम गायब भी किवें हो जांदे हन।
1: उस दे मंत्रियां ने बिल्कुल इस गल दा विश्वास ना कीता कि ये असली शेर सन। उन्हां नूं लग्या कि ये बीमार है, तां उन्हां ने बहुत वैद्यां हकीमां नूं सदिया ताकि वो ठीक हो जाए, पर कोई मदद ना हुई।
12: तां भाई जेठा
1: वैद्य दा पेश बनाया अते आप जाके सम्राट नूं मिले।
11: कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकिया, मेरे रोग नूं कोई ना दस सकिया। देखते हैं जे तुसी दस सको।
6: असल विच तुसी बीमार नहीं हो, मैं जानदा हां तुहाडे नाल की हो रहा है। रात वेले दो शेर आंदे हन ते तुहाडे दोवें पासे आके बैठ जांदे हन।
11: तुहानू इस बारे कीवें पता लग्या?
6: मैं एक बहुत वड्डे गुरु दा शागिर्द हां, मैनू बहुत कुछ पता है। मैनू ए भी पता है जदों तुसी परेशानी विच हुंदे हो तां तुहानू गुरु हर गोबिंद साहिब बचा लेंदे हन, नहीं तां शेरा ने हुण तक तुहानू मार देना सी।
11: वाह, तुहानू ते सच दा पता है। मैं ऐसा की करां जो मेरी मौत ना आए?
6: तुसी गुरु हरगोबिंद साहिब नूं बहुत चिरदा अपने कैद विच रख्या है। जितना तुसी पहला तय कीता सी उस तो किते वध समा हो गया है। तुसी गुरु नूं झूठ बोलिया है, तां करके ही शेर तुहाडी जान दे दुश्मन बने हुए हन। तुहानू उन्हां नूं जल्द तो जल्द रिहा कर देना चाहिदा है। तुहानू गुरु पास जाके उन्हां अगे सीस निवा के मुआफी दी फरियाद करनी चाहिदी है। जेकर तुसी उन्हां नूं अज ही रिहा ना कीता तां शेरां ने भी अज रात ही तुहाडा अंत कर देना है।
11: अज रात? नहीं नहीं, ओए ग्वालियर दे किले दे सिपाहियां नूं कह दियो कि गुरु हरगोबिंद जी नूं इसे वक्त रिहा कीता जाए।
1: भाई जेठा जी दी ए तरकीब कम आई।
11: हे अल्लाह, मैं आस करता हां कि गुरु मैनू बख्श देंगे। मैं उना दी कृपा लई कुछ भी करन नू तैयार हां।
1: भाई जेठा गुरु साहिब दे दर्शन करन दोबारा किले च चले गए।
6: गुरु जी
4: साडे कोल एक खुशखबरी है।
1: पर गुरु जी जानते सन कि की हो रहा है अते भाई जेठा तो कुछ निराश लग रहे सन।
4: गुरु जी की सब ठीक है?
1: गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उन्होंने एक प्याला दिता ते हुक्म कीता,
12: भाई जेठा
1: जा उठ, इस प्याले विच नदी तो पानी भर के लिया।
4: हाँ जी मेरे गुरु जी।
1: नदी कोई ज्यादा दूर नहीं सी, वो किले तो निकले, नदी दे लागे गए, प्याला भरिया, वापस आ गए ते गुरु साहब नू पेश कीता। पीण दी था गुरु साहब ने उन्हू कहा, हुण जाओ ते पानी दोबारा नदी विच पा दियो। वो हैरान हो गए,
4: वापस मतलब? अच्छा जी, सत बचन मेरे गुरु।
1: उन्हें गुरु दा हुकम मन्या अते वापस नदी दे कंडे चले गए। सारा पानी प्याले विचो नदी विच पा दिता अते दोबारा अपने गुरु कोल चले गए। ते गुरु जी ने गो पुछया, जदो तुसी प्याला पहला भरिया सी तां की तुहानू नदी दे आकार विच कोई फर्क लग्या सी? की नदी दा आकार घट गया सी?
4: नदी विच ते बहुत पानी है, नहीं मैनू ते कोई फर्क महसूस नहीं होया।
1: तां गुरु जी ने पुछया, जदो तुसी ओ प्याला दोबारा नदी विच पा दिता तां की तुहानू आकार विच वट्टी लगी?
4: प्याले दा ते नदी नाल कोई तोल ही नहीं, उस नाल कोई फर्क नहीं पिया।
1: गुरु साहिब जी ने दसिया, जो गुरु घर की शक्ति है उस सदा ही नदी वांग वगदी रहती है। गुरु की नदी हमेशा ही भरी रहती है, ना वो घटाई जा सकती है ना वधाई जा सकती है। सब नूं यह सोझी आउण लगी कि गुरु साहिब जी ने उन्हां नूं यह काम करन लई क्यों किया सी। यह अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करन लई दिता गया एक उदाहरण सी। गुरु जी अगे सिख्या देंदे रहे, तुहानू अपने नेक कम्मा करके अते सेवा करके एक छोटे जिहे प्याले दी प्राप्ति हुई है, पर उस छोटे जिही कमाई नाल तुसी ये सोचिया कि तुसी एक वड्डा घर करोगे। तां गुरु साहिब ने सारिआं नूं याद करवाया कि उह अपने आप नूं रिहा कराउण लई बहुत सारे कोतक रचा सकते सन। जो शक्ति तुहाडे कोल हुणे है गुरु घर तो ही प्राप्त हुई है, कि इस घर विच तुहाडे जिनी शक्ति नहीं है? अपने दिल नूं यह सवाल करो।
4: हाँ जी मेरे गुरु जी, मेरे कोल शेर विच तब्दील होने दी शक्ति है, ते मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं दिल्ली शहर नूं भी खत्म कर सकता हाँ, पर तुसी तुहाडे कोल मेरे नालों किते वद बेअंत शक्तियां हन, अते तुसी इस सब दा कदे भी अंत कर सकते सी जिवें तुहानू पौंदा।
1: गुरु जी ने कहा, तुहानू सदा ही अपनी शक्ति दा इस्तेमाल करन लई हुकम लेना चाहिदा है, अते असी तुहानू यह हुकम नहीं दिता है, तां करके हुण तुहानू गुरु घर दे हुकम तो बाहर जाण दा नतीजा भोगना पैणा है।
4: मैं समझ गया हाँ, मैं हर प्रकार दा नतीजा भोगण लई तैयार हाँ।
1: सारिआं नूं हुण गुरु साहिब जी दे संदेश दा एहसास हो गया।
4: मैं भी बस यह कहना चाहुंदा हाँ कि अजिहा करन लई मैनू हुकम होया सी। माता गंगा जी ने बाबा बुढ़ा जी राही यह हुक्म कल्या सी कि असी अपनी शक्ति नाल जो भी कर सकते हाँ वो करिए, जिस नाल आप जी जल्दी रिहा हो सको। बाबा जी ने साड़ी इस तरकीब की हिमायत की सी, फिर भी आप जी नू सब दा भला मालूम है अते मैं तुहाड़ी आग्या दा पूर्ण तौर ते पालन करांगा।
1: गुरु जी ने अकाल पुरख की आग्या नू मन्या ते आख्या, असी की कर सकते हाँ? असी माता जी अते बाबा जी दे वचन नहीं मोड़ सकते, तां तुहानू कोई सज़ा नहीं होवेगी, पर सानू एह जे काम नहीं करने चाहिए। तां गुरु साहिब जी ने सबनू संता दे मार्ग बारे समझाया। सब तो वड्डी शक्ति यह है कि शक्ति होंदे हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं करना, ना जरिया जाण वाले नू असी चरना सीखना है। ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
6: ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ।
1: ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ?
3: ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
1: ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ?
3: ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਦੀ ਜਿੰਨੀ।
1: ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਬਸ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਹਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਚਰ ਚਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੇ ਤਦ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਣਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

आप सबना दा निक्की जी कौर जिंद दे जीवन विच जी आया नू। अज जिंद कौर दा उस दिन नवे स्कूल विच पहला दिन है। वो बस निकलन तो पहला अपने सवेर दा नितनेम कर रही है। वो सोचती सी कि अज सब कुछ ठीक रहेगा, पर जिंदगी एनी सौखी नहीं। जिंद कौर तुहानू एक आम जी कुड़ी जरूर लगेगी, पर आम दी परिभाषा तो कितने दूर है। जिंद कौर इन्ना पाठ करती है, इन्ना नाम जपती है कि सचमुच उसके कोल रिद्धियां सिद्धियां हन कि वह दूजे लोगों विच सफर कर सकती है।

0: बस एक औरत है, हाँ इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगता है ए जंग करना जान दी है, पर मैनू नहीं हरा सकती।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते भारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि वो कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान तार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस ये कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वो मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहलां तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निग्गी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया ता तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो सिखी विच रह के।
4: उदों जिंद कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रां नू अपने सामने प्रगट होंदे देखदी है। उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां ते तुहाडे लोड़ दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुकियो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौण हो।
3: मैनू नहीं लगदा कि मैं दोबारा कजरी धरांगी।
5: हा हा हा, शाबाश। पर जे तुहानू कदे डर लगे भी, उदो समां है योध्यां दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओह कीहड़ी वार है?
5: साडे कोल बहुत सारीआं वारां ने।
1: मैनू लगदा है इस समें ए वार साडे गाउण दे लई बिलकुल ठीक है।